0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीट हासिल कीजिए.
1: दिस इज लाइकर रेडियो.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
2: डेजर्ट सफारी,
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग.
1: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
4: ياسين.
5: ياسين.
4: والقرآن الحكيم.
5: By the wise Quran.
4: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
5: Indeed you, O Muhammad, are from among the messengers.
4: عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
5: On a straight path.
4: تنزيل العزيز الرحيم.
5: This is a revelation of the exalted in might, the merciful.

0: Breakfast with Deep Raja. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK brand.
1: And a pound in your pocket this morning can get you 127.65 Indian rupees. And don't forget, when it comes to, of course, SBI, you can actually make those exchanges in the branch, online, or via the SBI Yono mobile app. But don't forget, terms and conditions apply, but don't delay. Make those transfers today.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Time now for the multiple choice question.
1: Are you ready? Here we go. I need your help. Okay, this is the question, my lovely friends and listeners. What is the main ingredient in falafel? What is the main ingredient in falafel? Is it A, green peas, B, split peas, or C, chickpeas? What is the main ingredient in falafel? A, green peas, B, split peas, or C, chickpeas? You know the numbers. Jaldi, jaldi, jaldi. Tell me.
0: WhatsApp Lyca Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20.
1: Just to let you know, I was about to go to a restaurant the other day, but I decided not to because I fell awful.
0: Breakfast with Deep Raja.
2: This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथहॉल ट्रेवल. At all protected.

0: Like what you hear? Do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: गुड मॉर्निंग, आइए बात कर लेते हैं आज के मौसम की. और आज मौसम में फिलहाल तो अच्छी खासी सनशाइन है, लेकिन दोपहर में कहीं से कुछ बादल आ सकते हैं, लेकिन आज बरसने का चांस नहीं है उनका. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री को टच करेगा और मैनचेस्टर में आज हल्की बारिश रहेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री तक जाएगा एंड मिडलैंड्स में 24 डिग्री के आसपास रहेगा आज का अधिकतम तापमान.
0: स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250.
1: Yeh hai
2: Leica Radio.
0: Ritu Sharma.
1: Yes, good morning. Namaskar. Swagatam. Aap sun rahe hain aapka manpasand radio Leica Radio Network. Aur Ritu Sharma hazir hai ek baar phir se aapse lekar dopahar ke 1 baje tak aapka saath dene ke liye aur sunwane ke liye dher sare classics.
3: Leica Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 9:63 a.m. and 13:77 a.m. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Radio.

0: लीजिए आप सबकी खिदमत में भी सलाम अपुन का। किशोरदा की आवाज में देश प्रेमी फिल्म से था ये गाना और ये धमाकेदार म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, जिसमें बिग बी के साथ थी ब्यूटीफुल हेमा मालिनी। और उससे पहले भी आपने ज्योति फिल्म का गीत सुना दादाजी की आवाज में, जिसमें जितेंद्र के साथ थी ब्यूटीफुल हेमा मालिनी। और आप सुन रहे हैं आप सबका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी हमारे साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खुश है, चुस्त है, तंदुरुस्त है और अपना जीवन बहुत ही खुशी के साथ जी रहे हैं। और आप हमारा साथ दे रहे हैं ये तो आपके मैसेजेस बता रहे हैं। तो बस साथ यूं ही देते रहिए, गीत संगीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक। और जो मुझे नहीं जानते हैं उन्हें बताते चलूं कि मेरा नाम है ऋतु शर्मा, एक बजे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और अगला गीत सुनवाने से पहले आपको बता दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.6 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल Atoll protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved, that fits your life.

0: क्या खूबसूरत गाना है लता जी और कुमार शानू की आवाज में, जिसे म्यूजिक से सजाया है जतिन ललित ने। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लिया था ये गाना। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन। ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और सभी का धन्यवाद करने चाहती हूँ। और ये समय है आप सभी के मैसेजेस पर एक नजर डालने।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
0: This is Laika Radio. तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला गीत सुनवाने से पहले आज का विचार शेयर करते हैं, जिसे हमेशा की तरह विजय गुडूरी जी ने हमारे साथ शेयर किया है और आपने लिखी है बात पते की। कहते हैं, जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता, कभी समय रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं, लेकिन इन सब के बीच चलते जाना ही जीवन का नाम है। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने हमें याद दिलाया है कि आज कोई है जिनका जन्म हुआ था। जी हाँ, आज उन्हीं को हम याद करने वाले हैं अपनी आज की यादें में, और उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। कौन है जरा सोचिए बताइए, वरना मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आपके मैसेजेस पर नजर डाल ली जाए। ये है नसीर अहमद भट्टी, लिस्बन पोर्चुगल में प्रोग्राम सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऋतु शर्मा कैसी हैं, क्या हालचाल है? अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ नसीर जी, आगे भगवान जाने। अभी तो ठीक हूँ, आप सबके साथ हूँ। थैंक यू संध्या बाब सर, आपने क्या शानदार फोटोग्राफ्स भेजी हैं। आपसे मिलना हुआ था और आपने मेरे संग फोटो भी खिंचाई थी, बड़ी सुंदर है। थैंक यू। रोशनी, आपने सही गेस किया है, यस उनका नाम क्या है, बिल्कुल मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले महेंद्र बाजारिया जी, थैंक यू। जासू जी, गुड मॉर्निंग। किरण जी, थैंक यू, स्वागत है आपका। ये है हमारे कौन साहब, अरे नाम लिखना भूल गए, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है, नंबर एंडिंग 883। अपना नाम जरूर लिखिए मैसेज के साथ साथ। मृदु जी, थैंक यू। अर्जुन जी, गुड मॉर्निंग। भारत जी, सपना एंड परेश व्यास जी, शेखर अनंत जी, दिव्या जी, आपका मैसेज का धन्यवाद। और आपने लिखा, हेलो ऋतु धर्मा कैसी हो। आपने मुझे करण जौहर का रिलेटिव बना दिया, लेकिन मैं खुश हूँ, काश मैं सच में ही होती। आई लाइक दिस नेम, थैंक यू साथ देने के लिए। अनिल सोनी जी वियाना में हमारा साथ दे रहे हैं, फरजाना एंड हमारे साथ है गिरी जी भारत में, कहते हैं शनिवार की दोपहर तो मैंने आपके नाम कर दी है, क्या बात है, ऋतु खुश हुई ये सुनकर। थैंक यू। प्रज्ञा तोची जी, हमारे राजेश जी हमारे साथ है, कहते हैं अगस्त के नए महीने का पहला शनिवार है और उसकी आपको शुभकामनाएं, और आप चाहते हैं कि धूप से भरा हो और तापमान ज्यादा सहनीय हो। हाँ, मैं तो डर गई जब आपने कहा धूप से भरा हो, मतलब धूप तो हो लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो, तो मौसम का मजा बहुत ही अच्छा है। और आप हमारा साथ दे रहे हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो साथ देते रहिए, सुनते रहिए। माती जी हमारे साथ हैं, हरीश खत्री जी, भारती जी, थैंक यू। और चलिए, अब इतने सारे साथियों के मैंने नाम ले ही लिए हैं, आप इतने प्यार से साथ दे ही रहे हैं, तो अगला गाना क्यों ना मैं आप सबको डेडिकेट कर दूं। चलिए फिर,
1: ये है लाइका रेडियो। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आशा भोसले और शशि कपूर की आवाजें आपने अभी सुनी। थैंक यू मौसुमा जी, आप हमारा साथ दे रही हैं। थैंक यू संध्या भाव सर, दिनेश पोपट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जैस जी एंड ऑफकोर्स हमारी आंटी जी नॉर्थ हॉल से प्रकाश सुथार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कुछ साथी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको हैं। लेकिन आज मीना कुमारी के साथ साथ नए जमाने की मीना कुमारी कह दूं या नहीं, तापसी बन्नू एक बड़ी ही अच्छी हीरोइन है और उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं। खासतौर पर उनकी बदला फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन थे। और हसीन दिलरुबा, ओहो क्या खून खराबा मार काट वाली फिल्म थी, लेकिन अच्छी थी। तो कुछ फिल्में जो बहुत अच्छी हैं, आज तापसी पन्नू भी अपना जन्मदिन मना रही हैं, आज ही के दिन वो पैदा हुई थी। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ ओल्डी गोल्डी की, क्योंकि शो में बजते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लासिक्स। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में याद रखिए साथ देना है, क्योंकि बात करूंगी मीना कुमारी की।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So gold rate is £96.48 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Where Bollywood comes first. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
5: Khatron Ke Khiladi.
6: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester Arndale, M4 3AB. Join the Leica Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
7: Royale Festival CIC presents,
6: in association with Leica Radio Greater Manchester,
7: Bradford City Mela 2026.
6: Sponsored by the University of Huddersfield and Avant Water.
7: This summer, Bradford comes alive with music, culture, food and full family entertainment at City Park and Centenary Square, bringing a Mela back after 13 years.
6: Catch live performances from Arjun, Sahara, First Man, Mumsy Stranger, Saloni, DJ Saika and many more artists to be announced.
7: Free entry for everyone on the 1st and 2nd of August 2026.
6: Exclusive radio partner Leica Radio.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
11: Punjab, the biggest tunes.

0: मिलन का मैसेज आया और कहना है कि अभिमान का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। चलिए मिलन जी, ये गाना आपके नाम किया।
1: Leica Radio Network, now the home of Leica Radio Greater Manchester.
0: और ये गाना लेकर चलेगा न्यूज तक।

0: रेडियो ऋतु शर्मा
1: जी हाँ, ये प्रोग्राम का सेकंड आवर है और आप सुन रहे हैं द ऋतु शर्मा शो और इस आवर में होती हैं यादें। और आज की यादें में हम बात करने वाले हैं मीना कुमारी के बारे में, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। कुछ किस्से शेयर करूंगी और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाऊंगी।
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 9:63 AM and 13:77 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Ritu Sharma live on Leica Radio, Greater Manchester.

0: लता जी के आवाज में दो खूबसूरत गाने आज आपने सुने, क्योंकि आज की यादें में हम याद कर रहे हैं अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत और जाने मानी अभिनेत्री मीना कुमारी को। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन 1 अगस्त 1933 में मीना कुमारी बॉर्न हुई थी और इन्हें हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक जाना जाता है, जिनकी बेहतरीन अधिकारी और भावुक किरदारों के कारण ही इन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन तो बाद में बनी, जन्म से ही इनके साथ ट्रेजेडी हो गई। जानते हैं, मीना कुमारी आज ही के दिन जन्मी थी 1 अगस्त 1933 में अली बख्श और इकबाल बेगम के घर। अली बख्श और इकबाल बेगम इनके माता पिता थे और जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो ये इनके पिताजी के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी। वो बहुत ज्यादा निराश हो गए मीना कुमारी के जन्म के बाद, क्योंकि उनकी दो बेटियां पहले से ही थीं और वो बेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हो गई फिर से बेटी। बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, घर परिवार में बहुत गरीबी थी और गरीबी का आलम ये था कि डॉक्टर को फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, और इसके चलते, अपने डिसअपॉइंटमेंट के चलते, अली बख्श ने मीना कुमारी को जन्म के बाद ही अनाथ आश्रम में छोड़ने का फैसला लिया और जाकर उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उनका मन बदला और उन्हें जाकर वापस घर लेकर आए। यानी कि ट्रेजेडी की शुरुआत जन्म के साथ ही मीना कुमारी के नाम से जुड़ गई। अब ये सोचिए, अगर उनके फादर उन्हें अनाथ आश्रम से वापस लेकर नहीं आते और मीना कुमारी फिल्मों में काम शुरू नहीं करती तो हमें इतनी बड़ी अदाकारा कैसे मिलती। लेकिन आपको बता दें कि मीना कुमारी के जन्म के बाद भी कुछ हालात परिवर्तित नहीं हुए। बहुत गरीबी थी और इसी के चलते जब वो सिर्फ 3-4 साल की थी उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। बेबी मीना के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम किया और कहने वाले कहते हैं कि जब भी उन्हें काम के लिए भेजा जाता था वो बहुत रोया करती थी। वो कहती थी मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन उन्हें एक्टिंग के लिए भेजा जाता था क्योंकि उस समय वो ही एकमात्र घर की कमाई का एक साधन थी। कुछ और बातें मीना कुमारी की लाइफ से जुड़ी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत बजने का इंतजार कर रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sinathanevents.org. Brought to you by Sinathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020 9963575757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
5: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hill Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Lyca Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Sidhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidhayu, Ayurveda that fits your life.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: This is Lyca Radio Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@lycaradio.com. That's info@lycaradio.com. We would love to hear from you to make Lyca Radio Greater Manchester a better station for you. Lyca Radio Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@lycaradio.com. New hits on Lyca Radio.

0: ये थी आशा जी की आवाज। फिल्म का नाम काजल, जिसमें मीना कुमारी थी, साथ में थे राजकुमार। और आज हम मीना कुमारी को ही याद कर रहे हैं यादें में, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
0: वैसे तो मीना कुमारी ने बहुत ही छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था आर्थिक तंगी के कारण, और उस जमाने में धार्मिक फिल्में बहुत बना करती थी, तो शुरुआत में इन्हें उन्हीं फिल्मों में छोटे बच्चे के रूप में काम मिला करता था। इनकी फिल्म आई थी वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, और इस तरह की कई सारी फिल्मों में काम करते करते जब मीना कुमारी थोड़ी बड़ी हुई और लोगों को लगा कि यस इनकी एक्टिंग में सुधार हो रहा है, तब इन्हें एक फिल्म मिली बैजू बावरा भारत भूषण के साथ। और बैजू बावरा फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया, और उसके बाद से मीना कुमारी ने अपने आप को एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। और उसके बाद तो जैसे कि अच्छी फिल्मों की झड़ी लग गई। साहब बीवी और गुलाम एक और इनकी फिल्म आई जो इनके करियर की यादगार फिल्म है, और इस फिल्म का गीत सुनने की चाहत आप सभी दिखा रहे हैं, तो चलिए आपकी मांग पर ये गाना हो जाए।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: गीता दत्त की आवाज में ये गाना मीना कुमारी पर पिक्चराइज जैसे कि अमर है, और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके बहुत खूबसूरत गाने हैं जो मीना कुमारी पर पिक्चराइज किए गए हैं। आज मैंने कुछ गाने चूज किए हैं, लेकिन उनकी बात हो और पाकीज़ा की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। उसका गीत मैं ऑलरेडी आपको सुनवा चुकी हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल लगे, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब मीना कुमारी बहुत बीमार थी। फिल्म रिलीज होने के महज 2 महीने बाद उनका निधन हो गया था, और ये फिल्म उनके जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन आपको बता दें कि मीना कुमारी इस फिल्म में इतनी बीमार थी कि जो कुछ गाने हैं और कुछ आखिर के जो शॉट्स है ना, उसमें मीना कुमारी है ही नहीं। पद्मा खन्ना ने मीना कुमारी का गेटअप लेकर घूंघट डालकर उन सीन्स को और उन डांस सीक्वेंसेस को किया है। हमें तो अंतर पता नहीं चलता, लेकिन जो जानने वाले हैं वो बताते हैं कि पद्मा खन्ना ने मीना कुमारी का रोल किया है पाकीज़ा फिल्म में। एक और बहुत ही सुंदर सा गीत उनकी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म से, जिसमें उनके साथ थे दिलीप कुमार।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: Hi, मैं हूँ रुबीना खान। सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में।

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर मीना कुमारी की एक बहुत ही यादगार फिल्म यहूदी से लिया था ये गाना। और आज हम यादें में मीना कुमारी को ही याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री थी बल्कि एक बहुत अच्छी कवित्री भी थी, या कहूँ शायरा भी थी, और अपनी शायरी नाज के नाम से लिखा करती थी और उनकी शायरी में उनका दर्द साफ दिखाई देता था। ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने भी एक बार कहा था कि मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी आंखों की खामोशी से पूरा किरदार बयां कर सकती हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाने वाली हूँ उन्हीं की फिल्म से।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है ऑनर बेस्ड अब्यूज और इसे होस्ट किया है दीप राजा और खुश ने। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन पर, एप्पल पर एंड जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहां जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज लाइका रेडियो।
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th। आज ही तशरीफ लाइए 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
4: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सफ्टोल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टोल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सफ्टोल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
7: Location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: From cuddles to intensive care. From school runs to sirens. For babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.

0: यस, बहुत ही खूबसूरत गाना और इस फिल्म में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मीना कुमारी के साथ सुनील दत्त थे, यानी कि अपने जमाने के सारे सुपरस्टार्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया मीना कुमारी ने, और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है इसलिए आज हमने उन्हें याद किया है। हम सब जानते हैं कि कमाल अमरोही से उन्होंने प्यार भी किया, शादी भी की, लेकिन कहते हैं कि रिश्ता उनका कुछ अधूरा सा था। फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ उनका रिश्ता बेहद भावनात्मक था और उतार चढ़ाव से भरा था। दोनों ने शादी भी रचाई लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों अलग हो गए, और कहा जाता है कि उनके निजी जीवन के दुखों का असर उनकी सेहत और उनकी फिल्मों के चुनाव पर पड़ा। मीना कुमारी बीमार रहने लगी और पाकीज़ा फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन पहले ही इनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर की फीस चुका सकें, और जब इनकी मौत हुई तब भी यही हालत थे कि मीना कुमारी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज कर सके और डॉक्टर की फीस चुका सके। एक प्रोड्यूसर ने इनके कुछ पुराने पैसे देने थे, जो पैसे इनकी मौत के बाद इनके अंतिम संस्कार के लिए काम आए, अंतिम संस्कार के वक्त काम आए। बहुत छोटी सी उम्र में, सिर्फ 38 की एज में मीना कुमारी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने 30 सालों तक फिल्मों में काम किया और एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स निभाए। मीना कुमारी के चाहने वाले तब भी बहुत थे, आज भी बहुत हैं। एक और खूबसूरत सा गीत आने वाला है इनकी फिल्म से, सुनवाती हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले बता दें कि £1 आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 96.4 pounds per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: We hit
4: Leica Radio.
5: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
6: Khatron Ke Khiladi.
7: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Leica Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
8: Royale Festival CIC presents,
7: in association with Leica Radio Greater Manchester,
8: Radford City Mela 2026.
7: Sponsored by the University of Huddersfield and Avant Water.
8: This summer, Radford comes alive with music, culture, food and full family entertainment at City Park and Centenary Square, bringing a Mela back after 13 years.
7: Catch live performances from Origin, Sahara, First Man, Mumsy Stranger, Saloni, DJ Saika and many more artists to be announced.
8: Free entry for everyone on the 1st and 2nd of August 2026.
7: Radio partner Leica Radio.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting ditzy twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella. Cinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Cinderella, panto fun for all the family.
3: Radio partner, Leica Radio.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल
10: ऑटो प्रोटेक्टेड।
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer, terms and conditions apply।
13: ये है लाइका गो

जिंदगी। लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू। Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250 8000.

0: Radio, where Bollywood comes first.
1: लीजिए ये गाना होने वाला है आज की यादें का आखिरी गाना. थैंक यू सो मच, आपने आज मीना कुमारी की यादें पसंद की. मिलते हैं आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में.

0: लीजिए थोड़ी तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा। वैसे तो आजकल बहुत सारे खेतों में धुआं उठ रहा है, कहीं जगह आग लगी हुई है और मैं असल आग की बात कर रही हूँ। वैसे तो दिलों में बहुत लोगों की आग लगी हुई है, जो प्यार करने वाले होते हैं उनके दिलों में तो आग लगी ही रहती है, लेकिन मैं जंगलों की बात कर रही हूँ जो इस गर्मी के मौसम में धू धू करके जल रहे हैं। दोस्ताना फिल्म से था ये गाना आशा भोसले और किशोर दा की आवाजें, और उससे पहले कुमार सानू और अलका यानी की आवाज में खुददार फिल्म का गीत। और ये गाना हमारी तोशी जी को बहुत पसंद है कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तोशी जी आप बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, कहती है ऋतु ये गाना अपने नाम कर लो। ओहो कितना प्यार, थैंक यू। मैं ये गाना आप सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ। लेकिन तोशी जी हमारी बहुत ही प्यार से सुनती है और बहुत आशीर्वाद देती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड इसके अलावा हमारी जासू जी हैं, बहुत प्यारी लिसनर हैं, और जासू जी आपका मैसेज आया है, कहती हैं कि ऋतु आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है, वी ऑल वांट टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उनका नाम है रमा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जासू, नरेंद्र, रीतन, सूजी, फाल्गुनी एंड लिटिल जय। और आप सबकी ओर से रमा को ऑफ कोर्स मेरी ओर से भी रमा जी आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगला जो गाना है जो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत है, जिसमें यशुदास की आवाज है, चलिए आपको ही डेडिकेट करते हैं। लेकिन ये गाना बजेगा अब से बस थोड़ी ही देर में, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको बताना है आज के थ्री वर्ड्स गेम कौन से हैं। थ्री वर्ड्स गेम को शुरू करना है, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो बताती चलूँ कि मेरा नाम है ऋतु शर्मा, वीकेंड्स पर सैटरडे संडे 10 से 1 आपका साथ देने के लिए हाजिर हो जाती हूँ और 1 बजे तक यही रहने वाली हूँ। तो बहुत सारे साथी तैयार हैं थ्री वर्ड्स गेम खेलने के लिए, चलिए फिर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बॉलीवुड के किसी एक गाने के शुरू की जो 3-4 लाइनें होती हैं उनसे मैं 3 वर्ड्स पिक करती हूं और आपको गाना पहचानना होता है। और सच बता रही हूं आप सब पहचान भी लेते हो, बहुत कठिन है, मतलब मैं नहीं बता सकती हूं लेकिन आप सब बता देते हो, कमाल है। चलिए मैं ऐसे करती हूं, जल्दी से 3 वर्ड्स आपको बताती हूं और आप पहचानिए कौन सा गाना है। पहला वर्ड है जिगर, दूसरा वर्ड है खिदमत और तीसरा वर्ड है प्यार। पहला वर्ड है जिगर, दूसरा वर्ड है खिदमत और तीसरा वर्ड है प्यार। 1963 की फिल्म है, ओपेनहाइमर का म्यूजिक है और रफी साहब की आवाज है। जरा सोचिए और बताइए कि ये कौन सा गाना है। आई रिपीट, जिगर, खिदमत, प्यार। 1963 की फिल्म है, ओपेनहाइमर साहब का म्यूजिक है और मोहम्मद रफी की आवाज है। अगर आपको पता है कि ये गाना कौन सा है तो फटाफट अपना आंसर भिजवाइए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर।
1: व्हाट्सएप लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर नाउ ऑन 07703403020।
0: आई रिपीट वंस अगेन, जिगर, खिदमत, प्यार। 1963 की फिल्म, ओपेनहाइमर का म्यूजिक और मोहम्मद रफी साहब की आवाज, कौन सा है ये गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127.65 pounds per gram. लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Hey, Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Durandar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Lyca Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
11: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
13: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
14: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
13: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
14: दिल तो टूट पे किया,
13: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
15: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
13: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
16: Punjab, the biggest tunes.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। ये है लाइका गो।

0: येशुदास की आवाज में चितचोर फिल्म से था ये गाना और क्या धुन बनाई थी रविंद्र जैन ने। शर्फून कहती है कि बहुत दिनों बाद ये गाना आज मैंने सुना है, तो यस बहुत दिनों बाद यहाँ से बजा भी है और आप सबने पसंद किया है और इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक येशुदास ही है और इसलिए इस गाने को बजाया। लेकिन अब समय आ गया है आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक के सिलसिले को शुरू करने का। लेकिन उससे पहले बता दूं कि थ्री वर्स गेम चल रहा है और बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं और कमाल की बात है कि किसी ने भी गलत जवाब आज नहीं दिया है। यानी कि जिन्होंने भी मुझे जवाब दिया है आप सबके आंसर सही सही है। यस सही है। गाना सुनवाऊंगी आपसे बस थोड़ी देर में, लेकिन पहले शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको पहला गाना।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.

0: लता जी की आवाज में क्या मीठा गाना था और क्या मीठी धुन बनाई है हेमंत कुमार ने, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। लेकिन इस फिल्म में काम किया था विश्वजीत ने और साथ में थी वहीदा रहमान। और आपको बता दें कि एज ए लीड हीरो ये विश्वजीत की पहली फिल्म थी और उसके बाद तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय LaikaRadio.com। वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द LaikaRadio ऐप एंड वेबसाइट ऑन LaikaRadio.com। लिसन लाइव और लिसन बैक।
2: दिस इज LaikaRadio।
0: आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है और ये खबर माता पिता के लिए है एक महत्वपूर्ण सूचना। अपने बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए सुनिश्चित करें कि उसके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशंस समय पर लग चुके हों। टीके आपके बच्चे को खसरा और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदायों में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर वर्ष 5,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं और ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो भी आप अपने GP से संपर्क करके वो छूटा हुआ टीकाकरण पूरा करवा सकते हैं। क्या आपके बच्चे के सभी टीके समय पर लग चुके हैं? अपने बच्चे की रेड बुक देखें या अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर।
1: This is Ritu Sharma.
0: और अब सुनवाते हैं आपको आज की ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत और इस बार लता जी के साथ आवाज मिलाई है मुकेश ने। मुकेश जी हमारे बहुत सारे साथियों के फेवरेट सिंगर हैं।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलिशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।

0: दीजिए।
1: या छलिया फिल्म से था ये गाना जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और संतोष जी और हमारे दिनेश पोपट जी का कहना है कि ये तो 1960 से मेरा फेवरेट गाना है, मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरे लीजिए पर दिल हमी को दीजिए, क्या प्यारी रिक्वेस्ट है प्यार के साथ। ब्यूटीफुल गाना जिसे आप सबने पसंद किया है। और अब समय आ गया है कि मैं बता दूं हमारे किन साथियों ने सही सही जवाब दे दिया है आज के थ्री वर्स गेम का। तो जिन्होंने सही पहचाना है उनके नाम है उल्लास, दिनेश पोपट जी, विजय घुनोवा जी, फातिमा, दिनेश पोपट जी दोबारा आपका नाम लिख दिया, प्रीति बेल्जियम से, गिरीश जी भारत से, गीता हर्ष जोशी, नरेन पटेल, शरफून, कामिनी जी, नीलेश तन्ना, जगदीश जी बुशी से, जैनुद्दीन हाजरा जी, महेंद्र बजारिया, उल्लास, चंदू शाह, दिव्या जी हैरो से, शालिनी जी, कमल शिवनानी जी, सहर, विजय गुडोरी जी, अनिल मांधे, नीलकंठ जी, फरीद हुसैन जी, मोहम्मद अयुब चौहान जी, कुकी तोची, उषा घोड़ा जी, आप सभी ने सही जवाब दिया है। मैंने कहा ना आज किसी ने भी जवाब गलत दिया ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, लगता है ये गाना आप सबका बहुत फेवरेट है। तो जिसे बजाऊंगी अब से बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल। आप वहां जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कीजिए द रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड कल्चर इन एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑन सैटरडे 8 अगस्त फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स। टिकट्स अवेलेबल है कहां पर, ticketsource.com/bhavan पर, या फिर आप उन्हें कॉल कीजिए ऑन 07421497541। आई रिपीट 07421497541।
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
1: और हॉलिडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ ऑल ट्रेवल को कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं दुबई के लिए, उन्हें कॉल कीजिए 02085748410 पर। और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रेवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस, विजिट southalltravel.co.uk।
1: और बस अब थोड़ी ही देर में सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना।
2: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: Leica Radio. Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester Arndale, M4 3AB. Join the Leica Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039 9635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
0: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
7: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
0: So where do we find something like that now?
7: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our eldest used it.
8: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: Have you noticed the way fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
12: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
2: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk.
13: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: यस रफी साहब की आवाज में ओपी नैयर के म्यूजिक पर ये गाना हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना था, जिसे लिया था फिल्म फिर वही दिल लाया हूं से। और हमारे ज्यादातर सभी साथियों ने आज के गाने को सही सही पहचाना था। और बस अब क्या, अब तो जाने की बेला आने ही वाली है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 96.48 pounds per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: तो लीजिए अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के इस पार आपका साथ देंगे गोल्ड पर अनुराग। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी फजील आपके साथ एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर आनंदी आपके साथ रहेंगी। लेकिन कल होगी मेरी और आपकी फिर से मुलाकात थैंक यू सो मच शो में आज मेरा साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल तक के लिए क्या कहूँ, कल फिर से मिलेंगे ढेर सारे गीतों के साथ। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
3: मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।
1: This is Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV.
5: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।

0: latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: And the gold rate is £96.48 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: Like a radio. Okie dokie, so I've got an important announcement for you. I should be doing it in Urdu, lekin mujhe Urdu padhni nahi aati, lekin I will try to say it in Urdu, but I'm going to say it in English first. So this is an important announcement for parents. Give your child the best possible start by making sure they're up to date with their childhood vaccinations. Vaccines protect against serious illnesses like measles and whooping cough, which can spread easily in our communities. If your child isn't vaccinated, they're not protected. Childhood vaccinations help prevent more than 5,000 deaths every year in England. It may help for you to know that all childhood vaccinations offered by the NHS have been safely given to over millions of children around the world. Now, what you need to do is you need to remember that it is important that vaccines are given on time for the best protection. But if your child has missed a vaccine, you can still connect with your GP to catch up. What you need to do is ask yourselves, are your children and is your child's vaccines up to date? Check their red book or speak to the GP practice. For more information, you can visit nhs.uk/childhood vaccinations. Now, I'm going to try and say it in Urdu. No, I'm not. I'm going to try and say it in Punjabi. Urdu will leave to the Urdu speaks. Now, agar tad bache hane te tusi unan de tike. What do you call vaccinations in Punjabi? Tike. That's what we call them. Tikka laban jana si measles ta. If your child isn't up to date with the injections or the tike, then unan nu please tusi doctor de kol leke jaavo, te up to date karwa lo. Ya unan di laal jehdi book hai gi ohde vich dekho ke unan de vaccinations kede miss ne. If you need any help, te tusi bas online jaavo, visit karo nhs.uk/childvaccinations. Bahut laazmi hai ki tusi eh karo, kyunki eh jehde ne injections tade bacche di zindagi bacha sakde ne. Measles vi ho sakde ne, unna kolon vi protect karde ne. And also jehdi whooping cough hundi hai, oh vi sadi community ch badi popular hai, te oh vi popular nahi lekin ho sakdi hai, te tusi na fir ohde against protect kar lo, tade vaste accha hi hoega. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਫ ਦੇ ਨੀਡ ਐਨੀ ਆਫ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
2: Leica Radio. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल।
7: ऑटो प्रोटेक्टेड।
8: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. A Like a Radio classic plays now.

0: and pneumonia. The former TOWIE star says people have held me up with kindness as she grieves. From Sky News, I'm Stevie Shillinglaw.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: गुड आफ्टरनून, आपकी अपनी सरिता हाजिर है आपको मौसम का हाल सबसे पहले बताने के लिए. सनी इंटरवल्स एंड लाइट विंड्स इन लंदन एंड इन सराउंडिंग एरियाज, मैक्सिमम 25, लो विल बी 14 डिग्री सेल्सियस. सनी इंटरवल्स एंड जेंटल ब्रीज इन मैनचेस्टर, मैक्सिमम 20 एंड लो विल बी 9 डिग्री सेल्सियस. एंड थंडरी शावर्स एंड लाइट विंड्स इन वेस्ट मिडलैंड्स एंड 26 डिग्री है टेम्परेचर टॉप का एंड इट विल गो डाउन टू 17. तो जरा जनाब बता दीजिए आपके दिल का मौसम कैसा है. दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250.
2: Sarita Samawal. जी हाँ, वेरी मच हाजिर है आपकी सेवा में आज के प्रोग्राम के साथ. हाउ आर यू टुडे, होप यू आर वेल. मुझसे पहले थे इस हॉट सीट पर बैठे अनुराग और लाइका रेडियो पर थी आनंदी. अब वहाँ है कौन, एनिका, और यहाँ है सरिता. आइए बैक टू बैक दो गाने सुनें. लाइका रेडियो,
1: लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक. दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, अ न्यू एशियन साउंड फॉर द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. 9:63 AM एंड 13:77 AM. डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप एंड लिसन व्हेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड. लाइका, सरिता सबरवाल.

0: हम बड़ी दूर चले आए हैं चलते चलते भाई, अभी तो चलना शुरू किया है। सरिता, ये सफर 3 घंटे का है और मेरे साथी भी मेरे साथ साथ चलेंगे दूर तक, यानी 7 बजे तक तो मेरा साथ जरूर निभाएंगे। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर वेल। हमेशा खुश और खैरियत से रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चीयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जिए और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और तिरकते हुए। गाने मेरी कोशिश रहती है कि चुन चुन कर लाऊं जो आपके मन को भा जाए, उन गीतों के साथ आप गुनगुना पाएं और उन गीतों के साथ आप गा पाएं और उन गीतों के साथ अपनी कुछ यादें ताजा कर पाएं। तो ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। पहले 2 गीत मैंने सोनू निगम की आवाज में इसलिए शामिल किए क्योंकि हमारे सोनू जी ने परसों यानी 30 जुलाई को अपना बर्थडे मनाया। एंड सोनू इज वेरी डियर टू मी, आई ऑलवेज कॉल हिम सोनू, आई नेवर कॉल हिम सोनू जी, बट ही इज सो लविंग। वेन एवर आई सेंड हिम अ मैसेज, ही ऑलवेज रिप्लाई, ऑलवेज विदाउट एनी फेलियर। मियामी में है आजकल, शो करने के लिए गए, वहां से भी मुझे मैसेज भेजा। एंड वो बहुत अच्छी एक फीलिंग है। मेरा और इनका रिश्ता जो है बहुत पुराना है, 90s early 90s से मैं इन्हें बड़े प्यार से जानती हूँ और वो भी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सोनू की लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इफ इट वॉज योर बर्थडे एज वेल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से अपना बर्थडे मनाया होगा। और अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, नेक तमन्नाएं, आपकी जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हजार बार आए। सोनू निगम के बारे में कौन नहीं जानता है, कितना कुछ बताएं। हाँ, सब कुछ मालूम है आपको कि बचपन से उन्हें गाने का शौक था। 4 साल की उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। अपने फादर के साथ स्टेज शो किया करते थे, मोहम्मद रफी साहब के गाने गाते थे। उन्होंने 32 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं और 6000 से भी ज्यादा गाने वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। एंड एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अभिनय भी किया था। एंड पहला गाना उनका कौन सा था आपको याद है? चलिए, जन थी फिल्म 1990 में, उसके लिए उन्होंने पहला जो गाना था वो गाया। एंड टीवी होस्ट भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, पद्मश्री से भी उन्हें सम्मान मिला है। तो हमारी तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हजार बार आए। अब 6000 गीतों में से अगर 2 गीत मैंने चुनने थे तो मैंने चुने वो गीत और जरा हट के थे। पहला गीत दंड नायक से चुना था मैंने, 1998 की फिल्म थी। एंड दूसरा गीत मैंने चुना फ्रॉम द फिल्म संघर्ष, और इस गीत में उनकी आवाज आपने सुनी और पहले गीत में साधना सरगम ने उनका साथ निभाया। अब क्योंकि इन्होंने ज़्यादा 90s में ही गाना शुरू किया तो 90s के ही गाने, तो मैं और ज़्यादा गीत नहीं शामिल कर पाऊंगी। लेकिन इन दोनों गीतों में कुछ और भी कॉमन था। क्या कॉमन था, अगर आपको पता चल चुका है तो आप मुझे बता सकते हैं। नंबर आपका जाना पहचाना है, व्हाट्सएप के जरिए मेरे स्टूडियो तक आप पहुंच सकते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई, अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं आज तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू 127 rupees and 65 paisas। एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप पर है आपके, तो घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट. हर वक्त हर जायके के लिए.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: the Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: भाई रफी साहब की आवाज के बहुत से दीवाने हैं और उन सब के नाम किया मैंने इस गीत को और रफी साहब को भी याद किया और कल का दिन रफी साहब का था और बहुत से गीत आपने सुने हमारे यहाँ से तो मैंने चुने ये गीत और उम्मीद करती हूँ जितने भी गीत रफी साहब के आप आज के इस प्रोग्राम में सुनेंगे वो हम सब उनको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। बहुत प्यारा गीत था, फिल्म अमानत से चुना था, 1977 की ये फिल्म थी। अगला गीत भी रफी साहब ही की आवाज में है लेकिन साथ दे रही है कौन, लता जी की आवाज। तो दोनों की आवाज में गाया हुआ ये गीत आप तक पहुंचा रही हूँ और ये गीत आप तक पहुंचाएंगे कौन, ये भी जान लीजिए।
1: Laika Radio
3: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
2: अगर आपकी पसंद की कसौटी पर खरा उतरे तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: भी मेरी बहुत से साथियों को पता चल चुका है कि आज के गीतों में कौन सा वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है. अगर आपको नहीं पता चला तो मैं बता दूं कि दूर रहने की बात हो रही है, कोई पास आना चाहता है, पर हम पास नहीं दूर की बात कर रहे हैं. सो आपको कोई खास गाना याद आ रहा है और चाहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल हो तो जल्दी से मुझे आप बता सकते हैं. और दो गीत हैं फिल्म गवाही के, उनमें दूर वर्ड नहीं आते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू प्ले उनमें से एक गाना जरूर आज के प्रोग्राम में प्ले होगा क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी. हो सकता है नेक्स्ट आवर या हो सकता है उससे भी अगले आवर में हो. तो दो गीतों में से जो गीत आपको बहुत पसंद है उसके बारे में मुझे बता सकते हैं. गीत है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गाया हुआ देख के तुझको, फिल्म गवाही का गीत. और दूसरा गीत था गवाही का, बहुत प्यारा गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो गाना. तो वो गीत कौन सा है, कौन सा गाना है, अभी सरिता को ही नहीं याद आ रहा है कौन सा गीत था. दिल की बातें हैं, कह दो तो बताएंगे, ये मौसम ऐसे मौसम कब आएंगे. सो दोनों गीतों में आप पंकज उदास जी और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, तो आपको कौन सा गीत ज्यादा पसंद है जल्दी से बताइएगा तो मैं उसी गीत को प्रोग्राम में जगह दूंगी. सो अब आगे बढ़ते हैं और अगले गीत में भी यही है वर्ड जो हर गीत में सुनने को मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ इस गीत को भी आप पसंद करेंगे.
2: Known as Asian Sound Radio. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

What a beautiful song, beautiful song. मुकेश जी की आवाज में सलील चौधरी जी का था संगीत. और प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचा देगा कहाँ? न्यूज तक. न्यूज के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ. मेरा साथ देते रहिएगा. थैंक यू एवर सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस.

0: offer special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250.
1: Like a radio. Sarita Samuel.
2: जी हाँ, प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट आवर आपने एंजॉय किया है। इस आवर में हम मीना कुमारी जी को याद करेंगे एंड पहले दो गाने, एक बाहर आने तक फिल्म से और दूसरा गवाही, दोनों ही गीत पंकज जी एंड अनुराधा जी की आवाज
0: में। AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Sarita Sabawal.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत था फ्रॉम द फिल्म बाहर आने तक, 1990 की फिल्म थी. अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास की आवाजें शामिल रही. मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. बहुत दिनों बाद प्रोग्राम में शामिल किया तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद भी जरूर किया होगा. और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म गवाही, जो 1989 में रिलीज हुई थी, और वो भी आज ही के दिन. जी हाँ, ये फिल्म आज ही के दिन 1989 में रिलीज हुई थी. एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंत बलानी ने, एंड हेमेंद्र भाटिया ने इसकी स्टोरी लिखी थी. एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द नाइट ऑफ जनवरी 16th बाय आयन रैन. ये राइटर पोएट राइटर का नाम है. एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य राज कपूर. जीनत अमान, शेखर कपूर एंड रंजीता कौर के साथ साथ आशुतोष गवारकर की भी इसमें एंट्री थी, यानी कि उन्होंने काम किया. एंड फिल्म का संगीत दिया था उत्तम जगदीश ने, और सरदार अंजुम ने इसके इन गीतों को लिखा था. दो गीत इस फिल्म के बहुत जबरदस्त थे, और दोनों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करूं, तो आपने मेरा काम आसान कर दिया. जिन मेरे साथियों ने इस गीत को वोट दिया था वो सब मुस्कुरा रहे होंगे. आई एम श्योर कि यू थरली इंजॉयड इट. विमल रायन जी, दिनेश पोपट जी, रोशनी जी, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, हरीश रुडा जी, हाना, विजय गुदरुई एंड प्रतिभा, अमिता जी, उमेश शाह जी, शौकत हुसैन, रानी इंसलाव तोची जी, भरत गंगाराम जी, अर्जुन जी, संतोष जी एंड उल्लास इन टोरंटो, फरजाना, भारती डीडी, भारती दो तरह की भारती जैनिया एंड मनु जी, इंतशाब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. मिसेज शेख आप भी सुन रही हैं. विजय गनोवा जी इन बैटरसी, दिव्या इन हैरो, सलमा इन मेडस्टोन, सहर, फरीदा गुलाम अली जी, सुदेश टकियार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह से प्रोग्राम में मेरा साथ देते रहिए. आइए बढ़ते हैं आगे, और फिर कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम मीना कुमारी जी को याद करेंगे.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आज आप पैसे भेजना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो डोंट फॉरगेट यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. आज आपके 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 127 रुपीज एंड 65 पैसा. एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
2: live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: Beautiful Ghana. Meena Kumari ji ki film Dil Ek Mandir se chuna tha. Rajendra Kumar and Rajkumar dono hi top ke heroes the is film mein aur saath टॉप की हीरोइन थी मीना कुमारी. बहुत खूबसूरत फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी जब भी मौका मिले जरूर देखिएगा. मीना कुमारी जी के बारे में हो सकता है आप मुझसे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो बड़े प्यार से इस वक्त सुन रहे हैं. 1933 में मुंबई की एक चौल में एक गरीब थिएटर कलाकार परिवार में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया. घर में इतनी तंगी थी कि पिता अली बख्श डॉक्टर की फीस तक नहीं चुका पाए जिन्होंने बेबी डिलीवर किया. इसके अलावा वो बेटे की उम्मीद भी लगाए बैठे थे. ये उनकी दूसरी बेटी थी. इस दोहरी मायूसी में उन्होंने क्या किया, बच्ची को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया और वहां से चले गए. हालांकि बेटी से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और फिर तुरंत अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े. पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही सी मीना के पूरे शरीर पर एंट्स काट रही हैं. अनाथ आश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे. ये सब देखकर उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई और आंखों से आंसू बह निकले. झट से अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया और फिर अली बख्श अपने चंद दिनों की बेटी को घर ले आई. समय के साथ साथ शरीर के घाव भी ठीक होने लगे, किंतु मन में लगी बदकिस्मती के घाव ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा. आज मीना कुमारी जी की जयंती है. मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 में हुआ था. मुझसे ज्यादा जानकारी वैसे आप रखते हैं. मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर इलाके की एक चौल में हुआ. पिता अली बख्श मूल रूप से पंजाब के भेड़ा इलाके से आए जो अब पाकिस्तान में है. वो मुंबई पहुंचे जो पारसी थिएटर में काम करने लगे. वहाँ के थिएटर से जुड़े हारमोनियम वादक, संगीत शिक्षक और उर्दू शायर थे और उनकी माँ, कुछ सोर्सेस के मुताबिक माना जाता है कि उनका दूर का रिश्ता टैगोर खानदान से जुड़ा हुआ था. हालांकि इसकी पुख्ता जो है न पता नहीं है, पक्का नहीं मालूम. घर के माली हालत की वजह से महजबी को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला. वो खुद चाहती थी कि पढ़ाई करे मगर परिवार को उनकी कमाई की सख्त जरूरत थी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया.

0: फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन जैसे ही मीना जी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो फिर इसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1963 में इनकी बहुत प्यारी प्यारी फिल्में आई थी, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगी मैं 4 साल की उम्र में 1939 की फिल्म लेदर फेस से उन्होंने विजय भट्ट के निर्देशन में बतौर बाल कलाकार अपनी फिल्मों की शुरुआत की, सफर शुरू हुआ बेबी मीना के नाम से। 1947 में एक और गहरा सदमा लगा जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया, इकबाल बेगम था उनका नाम, और उन्हें लंग्स का कैंसर था। नए घर बांद्रा में शिफ्ट होने के महज 18 महीने बाद ही विजय भट्ट ने उन्हें फिल्म दी बैजू बावरा। इन 1952 में उन्हें मौका मिला जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलाया। ये अवार्ड की शुरुआत का ही साल था। इसके बाद के दशक में उन्होंने परिणीता, दो बीघा जमीन, साहिब बीबी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पराए जैसी फिल्मों के लिए बहुत ही सीरियस रोल्स किए थे, संजीदा रोल किए थे, दर्द से भरी भूमिकाएं निभाई, इसीलिए तो कहलाए क्या। आप सभी जानते हैं उन्हें सभी क्या कहते थे, वो कहलाए ट्रेजेडी क्वीन। सो उन्हीं की फिल्म बैजू बावरा का ये गीत हो जाए, चलिए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं ये बता दूं,
1: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट
0: राइट बी दिस इंस्टेंस एपिसोड अनकवर्स द हर्श रियलिटी ऑफ ऑनर बेस्ड अब्यूज इन अवर देसी कम्युनिटीज। सो दीप राजा विल एंड खुश विल बी टॉकिंग टू द गेस्ट एंड इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन रूटेड इन ट्रूथ करेज एंड द चेंज दैट इज नीडेड। एक्स्ट्रा लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अगर अभी तक नहीं देखा है तो इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइक एक्स्ट्रा।

0: क्या बात है, ऐसे गीत एवरग्रीन है। और 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्होंने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी की तीनों जो फिल्में नॉमिनेट हुई थी, आरती, मैं चुप रहूंगी और साहेब बीबी और गुलाम, तीनों मीना कुमारी जी की फिल्में थी। और यह आखिरी फिल्म ही नहीं, उन्हें आखिरी फिल्म थी ये नहीं उन्हें अवार्ड दिला पाई, जिसमें उन्होंने शराब की लत से जूझती हुई अकेली एक बीवी का रोल निभाया था, यानी कि साहेब बीवी और गुलाम के लिए उन्हें अवार्ड मिला था। ये किरदार आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक कैसे कहें कि एक हिस्सा ही बन गया। निजी जिंदगी में उन्होंने 14 फरवरी 1952 को निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शादी की, जो 19 साल उनसे बड़े थे। शुरुआत में रिश्ता प्यार भरा रहा, लेकिन बाद में बहुत कड़वाहट हो गई। फिर उन्होंने 1950 में पाकीज़ा की शुरुआत कर दी थी, लेकिन टेक्निकल ही चीज़ के कारण और दोनों के जो डिफरेंसेस हो गए थे उसकी वजह से फिल्म डिले हुई इतने साल तक। देन 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई थी, पहले बॉक्स ऑफिस पर बहुत फीकी रही, लेकिन 28 मार्च 1972 को जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, बिगड़ गई थी मीना कुमारी जी की, एंड 31 मार्च 1972 को वो इस जहां को छोड़कर चले गई, तो फिर फिल्म ने एक बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया था फिल्म का, और फिल्म बहुत ज्यादा चली थी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you today Indian rupees 128.62, Pakistani rupees 373.71, Sri Lankan rupees 451.58, Bangladeshi taka 166.25 and US dollars 1.34.
1: Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Gold ka rate hai 96 pounds and 48 pence per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio. होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
4: Royale Festival CIC presents
5: in association with Leica Radio Greater Manchester
4: Bradford City Mela 2026,
5: sponsored by the University of Huddersfield and Avant Water.
4: This summer Bradford comes alive with music, culture, food and full family entertainment at City Park and Centenary Square, bringing a Mela back after 13 years.
5: Catch live performances from Origin, Sahara, First Man, Mumsy Stranger, Saloni, DJ Saika and many more artists to be announced.
4: Free entry for everyone on the 1st and 2nd of August 2026.
5: Exclusive radio partner Leica Radio.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.co.uk.
7: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
8: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
1: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: गीत होंगे, मेरा साथ देते रहिएगा। कोई खास गीत सुनना हो, किसका बर्थडे, शादी की सालगिरह है, बताना चाहते हैं और मैं उन्हें विश कर दूं, तो जल्दी से मैसेज भेजिए।
1: Maika Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Maika Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 9:63 AM and 13:77 AM. Download the Maika Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Maika. Sarita Sabawal.

0: अभी ये दो गीत जो मैंने शामिल किए, ये दोनों गीतों की फिल्में जो थी वो रिलीज हुई थी लास्ट वीक ऑफ जुलाई मंथ. सो साजन की बाहों में, अब 28 जुलाई को मेरा शो नहीं था तो मैंने सोचा था कि ये गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी. सो साजन की बाहों में फिल्म से लिया था पहला वाला गीत, डायरेक्टेड बाय जी प्रकाश, एंड इसमें काम किया था ऋषि कपूर ने, साथ में थी रवीना टंडन एंड तबू, और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने. उम्मीद करती हूँ आपको गीत पसंद आया जो मैंने शामिल किया कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाजों में. आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब समझते हैं, है ना, ऐसा ही होता है. जो भी आपकी जिंदगी में है उनके नाम करते हैं ये गीत ताकि वो भी खुश हो जाएंगे. और दूसरा गीत मैंने ऊंचे नीचे रास्ते, बहुत प्यारा गीत था, किशोर दा एंड लता मंगेशकर जी की आवाजों में गाया हुआ ये गीत, मैंने खुददार फिल्म से लिया था. और ये फिल्म भी लास्ट वीक ही, वेल एक्चुअली 30th of July 1982 को रिलीज हुई थी. रवि टंडन जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. फिल्म में मल्टी स्टार फिल्म थी, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, प्रवीण बॉबी, तनुजा, बहुत सारे एक्टर्स थे इसमें. बिंदिया गोस्वामी भी थी, प्रेम चोपड़ा थे, महमूद थे, और इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने. ये दो गीत प्रोग्राम में इसलिए शामिल हुए. आपको पसंद आए तो जरा इशारा कर दीजिए, मुझे पता चल जाए. वैसे आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे सामने हैं, थैंक यू एवर सो मच. इतने प्यार से आप मुझे मैसेजेस लिख लिख कर भेज रहे हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 65 paisas. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Disney twist. Touring to St. George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
5: Radio partner Leica Radio.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 Stockport Road, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: What a beautiful song तेरी तस्वीर को सीने में दबा रखा है. सावन को आने दो, ये था फिल्म का नाम. और ये फिल्म 1979 की फिल्म है जिसमें काम किया था अरुण गोविल ने और साथ में थे अमरीश पुरी एंड जरीना वहाब, रीटा बहादुरी एज वेल. राज कमल जी का संगीत और हमारे इस हफ्ते के आर्टिस्ट के जे यसुदास जी ने इस गीत में अपनी बहुत ही मीठी सी आवाज से इस गीत को भी अमर बना दिया. वैसे आपको बता दें कि इन्हें 8 times इन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है एंड फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं उसमें 5 times एंड द स्टेट अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर 36 times. वाह वाह, और बहुत खूबसूरत गीत है इनके और उनमें से मैंने इस गीत को चुना. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज़, फिल्म का नाम था हवस एंड 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग टुमारो, पर गलती से मिस्टेक हो गई ना, गलती से मिस्टेक हो गई और आज मैंने प्ले कर दिया। कल क्यों बजाना था मैंने ये गीत, क्योंकि कल ही के दिन ये 1974 में रिलीज हुई थी, तो आई थॉट आई विल प्ले इट टुमारो, बट आई वाज जस्ट चेकिंग कि गाना है हमारे पास और मैंने क्यों कर दिया। बट डजंट मैटर, कल भी सुनवा देंगे कुछ और फिल्म हवस से ही, और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं। शिखर जी थैंक यू, जय माता दी, आपका एक इवेंट है और इन्वाइट भेजा आपने, तो कल सरिता फिर प्रोग्राम कैसे करने आएगी। हाँ, और जगतार जी आप भी ज्वाइन कर चुके हैं, वैंकूवर में प्रोग्राम सुने, विजय गुजरोई, अमिता जी, शेखर जी, संध्या भाव सर, इंतशाब, महेंद्र बरजारिया जी एंड देशराज बसन जी। मुझे उम्मीद है कि आपने भी मीना कुमारी जी पर जो मैंने ट्रिब्यूट पेश की आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। एंड एक डेडिकेशन मुझ तक पहुंची थी मीना जी, शायद मीना जी ने मुझे लिखा था कि यस, मीना चौहान जी वेम्बले में प्रोग्राम सुन रही है, लिखती हैं कि कैन यू प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर माय डॉटर विराशी, विराशी एंड सोनू, सन इन लॉ केवल, विराशी एंड केवल, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी 29 जुलाई को, आपकी जोड़ी सलामत रहे, इसी तरह से प्यार बना रहे, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ रहे, मम्मी और पापा का, मीना और डैडी आपके इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, और सारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
0: सो आप समझ गए ना, फिल्म हवस का गीत आप तक पहुंचाया था डेरी बेल वालों ने, और अब जरा आगे बढ़िए।
1: ये है लाइका रेडियो,
0: और लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मैं आपको बता दूं कि वी आर प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल। एक्सपीरियंस द रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एंड कल्चर इन एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑन सैटरडे 8 अगस्त एट 3 PM, from 3 PM onwards. So tickets available from ticketsource.com, ticketsource.com /Bhavan, or you can call 07421 497541. I'll repeat the for the tickets website ticketsource.com/Bhavan, या फिर आप फोन कर सकते हैं 07421 497541।
3: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलिशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई ये गाना मैं लास्ट आवर में प्ले करना चाहती थी लेकिन वक्त की कमी के कारण नहीं कर पाई. मीना कुमारी जी की फिल्म से मैंने चुना था इस गीत को. उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पसंद किया.
2: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.67, Pakistani rupees 373.71, Sri Lankan rupee 451.57 and Bangladeshi taka 166.25.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LEICA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: It's £96.48 per gram.
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
4: Leica Radio.
5: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: जी हाँ, वैसे आज सैंडी नहीं आ रहे हैं, आज उनकी जगह सुप्रतिम आपका मनोरंजन करेंगे, आपके लिए विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म से चुना है मैंने इस गीत को. और इसकी भी यही वजह है कि ये फिल्म भी आज ही के दिन 1960 में रिलीज हुई थी. राज कपूर एंड पद्मिनी ने इस फिल्म में काम किया था. राधा कमरकर ने इसे डायरेक्ट किया, शंकर जैक्सन का संगीत. इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ मैं और मेरे जाने का वक्त हो गया. यस, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय, हैव अ लवली इवनिंग.

0: It's going to be a fun evening. Stay tuned with good music, good vibes, dheer sari baate, dheer sari gupshup, Bollywood insiders, kisi ka birthday, kisi ke liye recommendation, aap jo kaho, aapka hukum sar aankhon par. So bas, maze aane wale hai, and ab jo gana aane wala hai aapke liye, and this hour especially, I have all the dhakad songs, Mast Kalandar, Dhakad, and Pritam Arijit ka combination from the movie Ludo. प्यार तो होना ही था 90s का ये बेहतरीन वाला गाना एंड पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इट इज समथिंग स्पेशल एंड पंजाबी गाना मैं प्ले करता हूं एवरी आवर इट्स गोना बी इमरान खान की आवाज होगी और बेहतरीन वाला गाना होगा सो मजे करेंगे साथ में एंड बाकी फील फ्री टू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज राइट अवे ऑन 07703403020 यस दैट इज माय नंबर आप मुझे कभी भी मैसेज करो और बस जो भी आपके मन की बात है वो बोल दो लेकिन आज पंजाबी गाना नो दिलजीत प्लीज प्लीज ओके ध्यान रखो एंड कमिंग अप दिस ब्यूटिफुल ट्रैक क्योंकि मैं मस्त तुम भी मस्त
1: अंकुर ऑन लाइका रेडियो

0: with Mic Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: से बेहतरीन वाले गाने आपको कहीं और नहीं मेरे शो पे मिलेंगे. एंड या दिस इज अंकुर, अंकुर के शो पे मजा आएगा. एंड मुकेश एंड कांचन जी की आवाज धर्मात्मा मूवी से 1975. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, और तुम दिखते भी सुंदर हो, बातें भी सुंदर करते हो, ऐसा मुझे कोई कह रहा है, मैसेज करके बता रहा है. सो थैंक यू सो मच. एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद ऑल द मैसेजेस व्हिच आई हैव बीन रिसीव. थैंक यू फॉर ऑल द लव. एंड बाकी देखो, मुझे ना थोड़ा सा मस्ती मजाक की आदत है. मैं क्वर्की, फनी और थोड़ा सा क्रेजी टाइप का बंदा हूं. यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी फन एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अ हैप्पी सोल, क्योंकि दैट इज वॉट यू स्प्रेड, दैट हैप्पी एनर्जी. इट इज सो सो सो इंपॉर्टेंट. तो मैं मजाक कर रहा था, मैं दिलजीत के गाने भी प्ले करूंगा, ठीक है. आई वॉज जोकिंग, जस्ट लाइक आखिरी पास्ता. अभी एक टाइम है लूडो. लूडो गेम खेला है किसी ने? खेला बहुत सारे लोगों ने होगा, बट लूडो मूवी नहीं देखी है तो देखना, क्योंकि इसमें गाने, बाय गॉड, अमेजिंग ट्रैक्स, बट स्पेशली दिस वन बाय अरिजीत सिंह की आवाज, यू गोना लव इट. प्रीतम का म्यूजिक, ओ माय गॉड. कैसा लगा ये वाला गाना मुझे जस्ट मैसेज ड्रॉप करके बताना.
0: The Mic Drop with Anchor.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Tonight is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: So today's gold rate per gram in England is around 96.48 pounds for 24 karat gold.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. This is Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, इसीलिए तो मैं यहीं पर हूँ। मैं गाना तो प्यार तो होना ही था, प्ले कर रहा था, बट मैं गाना कौन से वाला था पता है? आई विल ट्राई एंड लुक फॉर द सॉन्ग। कौन सा? मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह मियाँ। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? इफ यू आर लिस्निंग टू वन ट्रैक एंड ऑल ऑफ अ सडन उस गाने से आपको कोई और गाना याद आ जाए, मेरे साथ अक्सर होता है। एंड दैट्स व्हाई आई लव म्यूजिक एंड दैट्स व्हाई आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द माइक। इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको गाने ऐसे बैक टू बैक याद आते रहते हैं। एंड आज का दिन इतना प्यारा है, टू बी ऑनेस्ट, वेदर इज सो सो गुड। ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ज्यादा ठंडी भी नहीं है, इट्स थोड़ा सा विंडी, बट इट्स सो नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स अ हैप्पी हैप्पी फीलिंग वाला डे। कुछ लोग हैप्पी फीलिंग में शादी में जाते हैं, कुछ लोग हैप्पी फीलिंग में ड्राइव पर जाते हैं, कुछ लोग पार्टी करते हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट यू नो अक्सर लोग क्या प्रेफर करते हैं? यस, माइक ड्रॉप सुनना प्रेफर करते हैं। सो आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग दैट, बिकॉज सैटरडे स्पेशल बनाने का काम मेरा, आपके चेहरे की मुस्कान की वजह बनने का काम मेरा, और पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर सबसे बेस्ट प्ले करने का काम भी मेरा। लव दिस ट्रैक एंड यू गोना लव इट। मैं हमेशा से सोच रहा था, लाइक मैंने आई थिंक दिस सॉन्ग आई प्लेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड आई थॉट कि कहीं पर मैं इस गाने को फिर से फिट इन करूंगा, बिकॉज सच अ लॉन्ग ट्रैक, बट ट्रस्ट मी ड्यूरेशन इज लॉन्ग, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट। इफ यू लव दिस ट्रैक, फील फ्री टू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन 07703403020, दैट्स माई नंबर।
0: With Anchor, the Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

एनी गेसेस? म्यूजिक सुन के अगर आपके जहन में आ गया है ये गाना तो फिर मजा ही अलग है उस चीज का. बट यस, यू गोना लव इट. मैं ये गाना काफी सुनता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि ये आप भी सुनो और एंजॉय करो.

0: Mic drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: देखो कुछ भी करो जिंदगी में doesn't matter, but it is important कि झूठा प्यार ना करो. प्यार करा है तो सच्चा वाला हो, नफरत करी है तो भी सच्ची वाली हो, जो भी हो शिद्दत से हो सच्ची वाली हो. वैसे मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट समवन, तो नफरत करना ही क्यों है किसी से. प्यार लो, प्यार दो, और अगर प्यार कोई नहीं दे रहा ना सो उनको कहते हैं कि हाथ जोड़ के कहो दूर रहो. कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, आप अपनी लाइफ में खुश हूं. सो मैनचेस्टर, यू नो व्हाट, पार्टी अभी तो शुरू हुई है क्योंकि मैं आया हूं. एंड फर्स्ट आवर कैसे बीता पता भी नहीं चल रहा. फर्स्ट आवर का एंड में ये वाला गाना, ये बताने के लिए कि नेक्स्ट टू आवर्स इज गोना बी रॉकिंग एट द सेम टाइम. सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. बाकी फील फ्री टू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. दिलजीत का गाना भी आ गया बट क्लासिक भी आएगा नेक्स्ट आवर में. आप जो कहोगे वो होगा जी.
0: दिस इज लाइका.
1: देखो फील फ्री टू टेल मी कि आपको कौन सा गाना सुनना है. टिल द एंड आई विल बी मेकिंग श्योर कि अगर पॉसिबल होगा तो आई विल प्ले योर ट्रैक्स. बाकी पार्टी अभी तो शुरू हुई है जी.

0: Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: I love this track. It is such an amazingly sarcastic track. हाँ मैं गलत, गलत मेरी बातें, गलती से ही दुनिया बनी. मतलब तुम मुझे गलत ठहराते रहो, but मैं अपने रास्ते में fun, मस्ती, good vibes, happiness के साथ आगे बढ़ता रहूँगा. That is what it is about. ठीक है, life is too short about कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कहने वाला है. Oh my God, दुनिया क्या सोचेगी? No, it doesn't matter. What matters is your happiness.

0: योर पीस ऑफ माइंड एंड एट द सेम टाइम एक जिंदगी मिली है जियो से खुल के, क्या पता कल होना हो, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड आपको भी वही करना चाहिए, है ना। और आज के दिन हम कौन सा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? Oh my God, there are such amazing days which we are celebrating. पता है आज है नेशनल मस्टर्ड डे। मस्टर्ड, किसी को मस्टर्ड सॉस पसंद है, किसी को मस्टर्ड ऑयल पसंद है, टेल मी। एंड पर्सनली मुझे यू नो पोटैटो वेजेस और ये सारी चीजें बनाना, लाइक पकौड़े एंड ये अनियन भजी बनाना, दैट शुड बी कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, वो जो फ्लेवर देता है। ओह माय गॉड, कौन है जो मेरी तरह मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करता है खाना, एंड इट इज वेरी हेल्दी एट द सेम टाइम। और मस्टर्ड सॉस किस किस को पसंद है, जल्दी से ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन 07703403020। किस किस को पसंद है बट किस तरीके से मस्टर्ड पसंद है ये बताना।
1: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: ये है लाइका रेडियो। This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
5: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed. 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Advertise your service here. 01612508222. Leica Radio, Greater Manchester. This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: You asked for it and I will play the track. Yes, classic hit of the hour, Meri Mehbooba, from one of my favorite movies. Main is movie se bahut gaane play karta hoon, as always. But ye wala song maine kaafi waqt ke baad, I think last time also, even I played this track, there was like around 6 months back. But now I'm so happy. Thank you for reminding me about this track. And Mohammed Rafi ki awaaz to evergreen hai yaar. Koi bhi gaana unka sun lo, matlab dil ko nahi, seedha rooh tak lagta hai. But at the same time, I asked you कि आपको जैसे आज हम National Mustard Day है, वो भी एक celebration है कि अगर आपको mustard sauce पसंद है, mustard में कुछ तरीके से oil का कुछ कोई dishes पसंद है, मुझे बताइए. काफी सारे messages आए, किसी सबने mostly ये कहा है कि mustard oil में bread पकौड़ा हो, onion भजी हो, and all of these things, and specially potato की सब्जी. Oh my God! You are my friend. क्योंकि same thought process same जा रहा है. और एक और day है आज हम जो celebrate कर रहे हैं, and बस कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन क्या, दो दिन, एक दिन पहले एक movie release हुई है, दो दिन पहले, which is Spider-Man, and आज National Spider-Man Day भी celebrate किया जा रहा है. मुझे ढूंढना होगा कि आज National Spider-Man Day है तो फिर I think कोई ना कोई Spider-Man भी होगा यहाँ पर जिसके लिए celebration ये होता है. But you know what, there was this man who used to climb like tall towers ऐसे without rope, without safety, and he was known as the real Spider-Man. And I think वैसे लोग भी होते हैं, but at the same time, Spider-Man से आपको क्या सीख मिलती है मूवी से, मैं बताऊंगा कुछ ही देर में. अभी के लिए ये गाना एंजॉय करो यार. The mic drop with Anchor.

0: Mic drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: मैं गीत गाता कम हूँ, बजाता ज्यादा हूँ. आई प्ले वंडरफुल ट्रैक्स आई बिलीव, एंड यही आप सबके मैसेजेस आते हैं. तो आई फील सो गुड एंड पॉजिटिव कि हाँ, आई एम डूइंग माय जॉब करेक्टली. बट एट द सेम टाइम, आज और कौन से दिन हैं जो सेलिब्रेट हो रहे हैं उस पर तो बात करी, बट आज एक दिन ऐसा पास्ट में हिस्ट्री में हुआ क्या था. 1981 में म्यूजिक टेलीविजन वॉज लॉन्च्ड. सो द चैनल वॉज पॉपुलरली नोन एज MTV, वॉज मोस्टली नोन फॉर शोइंग म्यूजिक वीडियोज, फॉर बींग hosted by all the video jockeys, and it was such a wonderful time because I remember it correctly. Is time pe meri paidaishi nahi hui thi, but I remember there were music channels later on jahan par TV famous ho gaya tha worldwide, and then we used to just call and pay a certain amount and ask for the song, and yeah, it was so much fun ki aap apne favorite gaano ko TV pe suno, and then you're like, oh my god, ye mera wala gaana play hua hai, dekho mera naam bhi aa raha hai. So it was really crazy at that part of time, and I think now ab aisa waqt hai ki jab sab cheezon ki sahooliyat bahut aasani se ho jati hai, to patience kahin na kahin dheere dheere logo ka ja raha hai. But I think kahin na kahin hame saadgi, simplicity mein believe kar wo cheez thoda sa maintain karna chahiye. Patience is the key for anything and everything, but dekho baatein to chalti rahegi. एक काम करते हैं, पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर मैंने ढूंढ रखा है आप सभी के लिए. अली जफर की आवाज, लव दिस ट्रैक, यू गोना लव इट एज वेल. फील फ्री टू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इफ यू लव दिस ट्रैक.
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर, द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.
1: I am sure you have my number. It's 07703404020. अगर आप न्यू लिस्नर हो तो मैसेज करो, ये पुराने हो तो फिर तो बिल्कुल करो. एंड आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, ओके, विद अ बिग स्माइल.

0: Anchor with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: Punjabi tracks, they are such a vibe. And abhi I am sure aap sabhi ko yaad ye zehen mein bas gaya hoga ki second last song of every hour is mostly Punjabi tracks from Ankur on Mic Drop, and Saturdays are fun. So how is your Saturday? Till now, tell me, कैसा लग रहा है आपको? गाने कैसे लग रहे हैं? मेरी आवाज कैसी लग रही है? मेरी बातें कैसी लग रही है? मेरा अंदाज कैसा लग रहा है? Feel free to just drop me a message. By the way, National Girlfriends Day. चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, girlfriends सभी के पास है. मतलब girl and friends, हाँ. Don't take it wrong. So, अगर आपके जितने भी girl और friends हैं, just call them and wish them. क्योंकि ये भी एक मोमेंट है, हर एक चीज लाइफ में सेलिब्रेट करनी चाहिए. Why not, right? एक बेहतरीन वाला गाना मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ. It is one of my favorite tracks, sung by Shankar, Adnan and Shreya. Let me know कैसा लगता है ये गाना, and we step into the next hour with this beautiful track.
0: The Mic Drop with Anchor.
1: इस गाने के हर बीट में आई थिंक इट्स लाइक मेडिटेशन. जस्ट टू हील यू, दिस सॉन्ग स्पेशली फॉर यू.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: Yes, तुम ही हो मेरे बंधु और सखा ही तुम ही हो everything. You know, a radio presenter or an artist is nothing without his or her listeners. It is very important to appreciate good things in life and good people. पता है life में ना you life is very not funny to be honest. It keeps on bringing challenges to you, but you know what? How you face it gracefully, that is what describes you. So कभी टूटो कभी हारो कभी बैठ जाओ रुक जाओ ठहर जाओ बट उसके बाद ऐसी छलांग लगाओ कि दुनिया देखे कि ओ माय गॉड दैट्स व्हाट द पर्सन शुड बी डूइंग एंड पीपल शुड बी इंस्पायर्ड विद दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इट इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्पिरेशन से मुझे याद आया प्रियंका चोपड़ा शी इज इनफैक्ट वन ऑफ दोज पर्सन जो कि इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर पीपल in Asia, India, Pakistan, but around the world. Ab recently, there is this boxer. And kehte hai na ki art ka koi...

0: बैरियर नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई एक कंट्री से ही इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा और उस कंट्री में कोई ही इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा. इट कैन हैपन एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. सो प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी मैरीकॉम, विच वॉज लॉन्ग बैक, एंड जिसमें वो बॉक्सर का, मैरीकॉम इज एन इंडियन बॉक्सर जिसका वो बायोपिक उन्होंने काम करा, एंड शी वॉज पोर्ट्रेइंग एज अ बॉक्सर. एंड यू नो व्हाट, उनको देखकर देयर वाज दिस लेडी फातिमा ज़ारा हु गॉट इंस्पायर्ड, एंड शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, एंड नाउ शी इज अ बॉक्सर, एंड शी सेज कि मैं कॉमनवेल्थ में जीतने आई हूँ एंड मेडल. सो शी इज लाइक द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर फ्रॉम पाकिस्तान टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल. देखा, इंस्पिरेशन कहीं पर भी मिल सकता है, बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है. चलो अभी के लिए पॉजिटिव रहो, और ये बेहतरीन वाला गाना आपके नाम.
1: Drop on Leica Radio.

0: Mic drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: देखो कसम ली है तो तोड़ना नहीं, और कसम तोड़ने का इरादा हो तो फिर कसम लेना नहीं, है ना। इट इज वेरी सिंपल। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, किशोर कुमार की आवाज एंड लता मंगेशकर जी। मूवी तेरे मेरे सपने, विच केम इन 1971, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज आउट देयर। बहुत ही प्यारी रोमांटिक मूवी है, एंड इतनी सिंपलिसिटी से है ना इस मूवी में, आप देखोगे तो आपका दिल भर आएगा। So yeah, I love watching movies. कोई भी एरा हो, मूवी मैंने घोल कर पी ली है, एंड दैट्स वॉट मुझे, अगर मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाता हूँ ना, तो यू नो वॉट मुझे पूछा जाता है कि चाहो ब्लड ग्रुप बताओ अपना, तो क्या, तो मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाता हूँ, बट देन दे से इट्स जस्ट बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड इसके खून में है जी। सही, हाँ, देखो मस्ती मजाक की बातें चलती रहेगी, बट यू नो वॉट, भाई तेरा स्टार है ये मूवी आई राघव जुयाल की, एंड इट इज रियली गुड कॉमेडी मूवी है, एंड द गुड पार्ट इज राघव जुयाल जो कि 15 साल से मेहनत करके फर्स्ट सोलो मूवी लेकर आए हैं, विच इज गुड। देखो अप्स एंड डाउन्स हर मूवी में होंगे, बट अप्रिशिएट करना चाहिए टैलेंट को, आर्ट क्राफ्ट को, ठीक है। और साथ ही साथ भाईचारा ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, सलमान खान एंड संजय दत्त, दे मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड दे हग्ड each other and in such an emotional manner, they cried actually, almost cried. बोलते ना लड़के रोते नहीं है ना, ना लड़कों की आंखों में भी आंसू आते हैं, and that bhaichara thing is there, which should be there, I think. It is so good to see all of these things, है ना। बाकी time for this beautiful track to make you smile and to make you feel loved from this movie, मैं वापस आऊंगा क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
0: The mic drop with Anchor.
2: हाय, मैं हूँ रुबीना खान। सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में।

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: अब अक्का इंडिया क्या इंडिया पाकिस्तान मैनचेस्टर एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल नो कि सैटरडे इवनिंग इज विद अंकुर विद गुड वाइब्स ऑफ कोर्स. देखो ऐसी वाइब अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब चीजें चलती रहती है. एंड व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक संग बाय कुमार सानू. मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट प्ले करते हैं. सो 1992 में जान तेरे नाम करता है जान तेरे नाम मूवी आई थी एंड उसी में से गाना है. एंड यू नो व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट रामायण. रामायण ऑफकोर्स एक इट्स माइथोलॉजिकल थिंग इन इंडिया एंड इसमें रणबीर कपूर मूवी लेकर आ रहे हैं. नमित मल्होत्रा मूवी एक्चुअली वो लेकर आ रहे हैं. VFX इज ऑन नेक्स्ट लेवल. टू बी ऑनेस्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट VFX डन लेटली इन इंडिया एंड दे आर सेटिंग अ बार एंड पीपल आर प्रीजिंग वर्ल्ड वाइड. में जैसे अब मैंने रिव्यू पढ़ रहा था, पाकिस्तानी व्यूअर्स इम्प्रेस्ड बाय रणबीर कपूर रामायण ट्रेलर एंड इट इज सो गुड. एंड सेम गोज इन UK, US, इंडिया. क्रिटिसिज्म देखो हर जगह होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स हर कोई मूवी में ढूंढ लेता है. बट आई थिंक कभी कोई चैलेंजिंग वर्क कर रहा है एंड कोई ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि येस दिस इज द कल्चर विच वी फॉलो एंड या इट्स गोना बी नाइस. बट एट द सेम टाइम पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर का वक्त हो गया एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक संग बाय जावेद अली. एंड उसी के बाद में कुछ देर में मिलूंगा ना यहीं पर.
0: The Mic Drop with Ankur, the Pakistani hit of the hour, is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: with Mike Drop on Leica Radio.
1: देखो ये सॉन्ग मेरे नाम कर रहा हूं मैं आपके तरफ से, बताना सही है कि नहीं.

0: Location, location, location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Leica Radio.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइक अ गोल्ड 2 ऑन लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप लाइक अ रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइक अ गोल्ड 2 डाउनलोड द लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज। दिस इज लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर्स बिगेस्ट लव सॉन्ग्स कंटिन्यू द लव साउंड लाइक अ।